तथा समग्र गुण लक्षणो वेदानां असंशयानां प्रसाद मात्रेण स्वभक्ता वेद संशय क्षेत्रोणां प्रणवाद्यशेष वैष्णव मंत्रोद्धारकाणां सर्वदा सर्व वैष्णव मंत्र जापकानां संसिद्ध सप्तकोटि महामंत्राणां भगवती भक्त्यतिशयेन भगवदुपासनार्थं स्वेच्छया गृहीत रूपाणां तत्र तत्र पृथक् पृथक् भगवतोऽनन्त रूपेषु पृथक् पृथक् वेदोक्त तदनुक्त भारतोक्त तदनुक्त संप्रदायागत स्वेतरस्वाभिन्नतया विशेष शक्ति विशेषाभ्याम् पृथक् व्यवहार विषय सर्वसामर्थ्योपेत निरवधिकानन्दानवद्य कल्याण गुण परिपूर्णानन्द गुणोपगम हर्तॄणाम् तथा वेदोक्त सर्वक्रियोपगम हर्तॄणाम् एवम् अनंत रूपावयव गुण क्रिया जास्तवस्था विशिष्ट भगवदुपासकानाम् परमदयालूनाम् क्षमा समुद्राणाम् भक्तवत्सलानाम् भक्तापराध सहिष्णूनाम् स्वभक्तान् दुर्मार्गादुद्धृत्य सन्मार्गस्थापकानाम् स्वभक्तम् माम् उद्दिश्य भगवतः पुरः परमदयालो क्षमा समुद्रा भक्तवत्सला भक्तापराध सहिष्णु तदधीनम् दीनम् दूनम् मनाथम् शरणागतम् एनम् उद्धरेति विज्ञापनकर्तॄणाम् सर्वज्ञशिरोमणीनाम् अशेषगुर्वन्तर्यामिणाम् सदा भगवत्पराणाम् भगवतोऽन्यत्र सर्ववस्तुषु मनः सङ्ग्रहितानाम् सर्वत्र सर्वदा सर्वाकार सर्वाधार सर्वाश्रय सर्वोत्पादक सर्वपालक सर्वसंहारक सर्वनियामक सर्वप्रेरक सर्वप्रवर्तक सर्वनिवर्तक यथा योग्यम् सर्वज्ञानाज्ञानबन्धमोक्षप्रदा सर्वसत्ताप्रदा सर्वशब्दवाच्य सर्वशब्दप्रवृत्तिनिमित्त सर्वगुणादिपरिपूर्णतमा सर्वदोषादिदूरा सर्वाचिन्त्य सर्वोत्तमा सर्वेश्वरा सर्वात्यन्तविलक्षण स्वगतवेदविवर्जितत्वादिना भगवद्द्रष्टॄणाम् अभिमानादि सर्वदोषदूराणाम् असूयेर्ष्याद्यशेषमनोदोषनिवर्तकानाम् नित्यापरोक्षीकृत रमायुक्ताशेषवद्रूपाणाम् अत एव विलीनाशेषप्रकृतिबन्धानाम् अत एव दूरोत्सारिताशेषनिष्ठानाम् अत एवाशेषभक्ताशेषनिष्ठनिवर्तकानाम् प्रणवोपासकानाम् अस्मदादिगुरूणाम् श्रीमदानन्दतीर्थश्रीमच्चरणानाम् अन्तर्यामिनी अनिरुद्ध प्रद्युम्न सङ्ग्रहण वासुदेवात्मक श्रीमध्ववल्लभ श्रीलक्ष्मी वेदव्यासात्मक अण्डस्थितानन्दरूपावयवगुणक्रियाजात्यवस्था विशिष्ट रमायुक्त क्षीराद्विशेषजायी श्रीपद्मनाभात्मक अण्डाद्बहिः अभिव्यक्त शुद्धसृष्टित्वेनाभिमत श्रीचतुर्मुखमुख्यप्राणोपास्यत्वाद्यनेक प्रयोजनकानन्दानन्दरूपमूलभूत तथा अशेषजगत्पालनप्रयोजनक शान्तिपत्यनिरुद्धमूलभूत अशेषजगत्तृष्टिप्रयोजनक कृतिपतिप्रद्युम्नमूलभूत जगत्संहारप्रयोजनक जयापतिसङ्कर्षणमूलभूत तथा स्वस्वासमग्रयोग्यताभिज्ञ परमानुग्रहशील भगवत्प्रेरित चतुर्मुखादि सद्गुरोपदिष्ट स्वस्वायोग्य भगवद्रूपगुणोपासनया सञ्जात स्वस्वायोग्य भगवद्रूप विशेषदर्शनभोगाभ्याम् विनिष्टानिष्टसञ्चित प्रारब्धलक्षणाशेषकर्मणाम् स्वस्वायोग्यतानुसारेण सम्पूर्णसाधनानाम् पूर्वकल्पे ब्रह्मणा सह विरजानदीस्नानेन त्यक्तलिङ्गानाम् तथा विनिष्टावशिष्टेष्टादेश प्रारब्धकर्मणाम् प्रलयकाले भगवदुदरेव सदा
आनंदमात्रे वशां तदनुभवरहितानां स्वस्वायोग्य भगवद्रूप विशेष ध्यानरतानां सृष्टिकाले भगवदाज्ञया भगवद्दुराद्बहिर्निर्गतानां श्री श्वेतद्वीपदर्शनं निमित्तीकृत्य प्रदानावरणभूत स्वेच्छा प्रहरणेन स्वस्वायोग्यानन्दाविर्भावलक्षण मुक्ति प्रदान प्रयोजनक मायावती श्री वासुदेवात्मक लक्ष्मीत्मक प्रलयाभ्यस्त श्री वटपत्रशेषदार्यशेष जगदुदराशेष मुक्तनाभिदेशोर्ध्वभाग कुक्षाख्यदेश त्रिविधाशेष संसारिनाभिदेशाखिल तमत्पतितनाभ्यतो भागदेश श्री भूम्यालिङ्गित कालादिज्येष्ठक परमान्वाद्यशेष कालावयव सृष्ट्यादिकर्तृशेष नामक परमपुरुष नामक श्री चतुर्मुख मुख्य प्राणोपासित चरणानिरुद्धादि चतुरूपात्मक गायत्री नामक सवितुर्नामक रूप विशेषात्मक व्याप्तरूप बृहत्शरीर शून्याविद कालाविद केवलाविद ब्रह्माविदानन्दाविद रूप विशेषात्मक निरूपचरित मूलरूप निरूपचरित व्याप्ता प्रतिबद्ध अनंतदेजपुञ्ज तादृशरमायुक्त रूप विशेषात्मक गायत्री भूतवाग् पृथ्वी शरीर हृदय वेदेन षड्विद गायत्री नामक लोकवेद समीर रमांतर्गत प्रणमाचतुर्य पादो वेद गायत्री पाद चतुष्टय प्रतिपाद्य वैकुंठस्थित अनंतावनस्थित श्वेतद्वीपस्थित सर्वजीवस्थित रूप भेदेन चतुरूपात्मक निरूपचरित सर्ववावर्त प्रतिपादक श्रीदेव्या निर्मा रूपाष्टक अभिमन्यमान चक्र शङ्खवराभयुक्त हस्तचतुष्टयोपेत प्रदीपवर्ण सर्वावरणभूषित विश्वादि भगवद्रूपाष्टक प्रतिपादक अकाराद्यष्टाक्षरात्मक श्रीमत्प्रणवाद्यष्ट महामन्त्र प्रतिपाद्य अष्टरूपात्मक मन्त्राध्यायोक्त भूवराहाद्यशेष वैष्णव मन्त्र प्रतिपाद्य भूवराहाद्यशेष रूप विशेषात्मक रमादि मन्त्र प्रतिपाद्य रमादिनिष्ठ रमादि नियामक रूप विशेषात्मक श्रीलक्ष्मी नृसिंहात्मक परमदयालो क्षमा समुद्र भक्तवत्सला भक्तापराधसहिष्णु देशकालाधिपते देहेन्द्रियाधिपते सूर्यवंशध्वज रघुकुलतिलक लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाग्रज श्रीमद्धनुपदुपासित चरण सीतापते श्रीरामचन्द्र त्वदाज्ञया त्वत्प्रसादात् त्वत्प्रेरणया त्वत्प्रीत्यर्थम् त्वाम् उद्दिश्य त्वाम् अनुस्मरन्नेव त्वदाज्ञया नियतेन मन्नियामकेन सत्ताप्रदवायुनामक चेष्टाप्रदप्राणनामक धारणाप्रदधर्मनामक मुक्तिप्रदमुक्तिनामक रूपविशेषैः मद्रुतिस्थितेन परमदयालुना क्षमा समुद्रेण भक्तवत्सलेन भक्तापराधसहिष्णुना सर्वस्वामिना सर्वप्रेरकेण सर्वदात्विकदेवताप्रेरकेण सर्वदात्विकासुरभञ्जकेन तथा तत्प्रेरणाप्रयुक्तदुर्मतिभञ्जकेन अत एव प्रभञ्जनशब्दमात्रेण प्रतिदिनम् प्रतिक्षणम् बुद्धिजोगकेन सर्वकर्मकर्त्रा सर्वकर्मकारयित्रा सर्वकर्मस्वामिना सर्वकर्मसमर्पकेण सर्वकर्मफलभोक्त्रा सर्वकर्मफलभोजयित्रा सर्वकर्मप्रेरकेण सर्वकर्मोद्बोधकेन सर्वकर्मशुद्धिप्रदेन सर्वकर्मशुद्धि

जय जय श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य पदवाक्य प्रमाण पारावारीण शेखर यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाध्यष्टांग योगानुष्ठान गरिष्ठ षड् दर्शनाचार्य वर्य निखिल विद्या चक्रवर्तिन सर्वतंत्र स्वतंत्र चतुष्षष्टि कला पारंगत दुर्वादिमत्तेव पंचानन व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर श्रीमद्वैदिक सद्वैष्णव सिद्धांत प्रतिष्ठापनाचार्य नास्तिक कुलतिमिर सहस्र किरण आस्तिक दर्शन महाचार्य श्रीमद्हंसनामक परमात्म ज्ञानपीठाध्यक्ष श्रीमन मध्वाचार्य मूल संस्थानाधीश्वर श्रीमद् कवींद्रयति पुंगवसमलंकृत दक्षिणादिपीठाधीश्वर निखिल भूमंडलाचार्य वर्य सकल यति कुलतिलक निखिल कर्मंदि वंद्य पदाब्ज सत्संप्रदाय प्रवर्तक सनातन धर्म संरक्षण दुरंधर श्री भागवताग्रेसर जगन्मान्य जगद्गुरु श्रीमद् विजयेन्द्र तीर्थ करकमल संजात श्रीमद् सुधींद्र तीर्थ वरकुमार राजाधिराज संसेव्य पादकंज श्रीमद् राजाधिराज श्रीमद् राघवेन्द्र तीर्थ गुरु सार्वभौम जय जय पराक् स्वामीन् पराक् बहु पराक्।

जय जय श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य पदवाक्य प्रमाण पारावारीण शेखर यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाध्यष्टांग योगानुष्ठान गरिष्ठ षड् दर्शनाचार्यवर्य निखिल विद्या चक्रवर्तिन सर्वतंत्र स्वतंत्र चतुष्षष्टिकलापारंगत दुर्वादिमत्तेव पंचानन व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर श्रीमद्वैदिक सद्वैष्णव सिद्धांत प्रतिष्ठापनाचार्य नास्तिक कुलतिमिर सहस्र किरण आस्तिक दर्शन महाचार्य श्रीमद्धंसनामक परमात्म ज्ञानपीठाध्यक्ष श्रीमन मध्वाचार्य मूल संस्थानाधीश्वर श्रीमद् कवींद्रयति पुंगवसमलंकृत दक्षिणादिपीठाधीश्वर निखिल भूमंडलाचार्यवर्य सकल यतिकुलतिलक निखिल कर्मंदि वंद्य पदाब्ज सत्संप्रदाय प्रवर्तक सनातन धर्म संरक्षण दुरंधर श्री भागवताग्रेसर जगन्मान्य जगद्गुरु श्रीमद् विजयेन्द्र तीर्थ करकमल संजात श्रीमद् सुधींद्र तीर्थ वरकुमार राजाधिराज संसेव्य पादकंज श्रीमद् राजाधिराज श्रीमद् राघवेन्द्र तीर्थ गुरु सार्वभौम जय जय पराक् स्वामीन् पराक् बहु पराक्।

जय जय श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य पदवाक्य प्रमाण पारावारीण शेखर यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाध्यष्टांग योगानुष्ठान गरिष्ठ षड् दर्शनाचार्य वर्य निखिल विद्या चक्रवर्तिन सर्वतंत्र स्वतंत्र चतुष्षष्टिकला पारंगत दुर्वादिमत्तेव पंचानन व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर श्रीमद्वैदिक सद्वैष्णव सिद्धांत प्रतिष्ठापनाचार्य नास्तिक कुलतिमिर सहस्र किरण आस्तिक दर्शन महाचार्य श्रीमद्हंसनामक परमात्म ज्ञानपीठाध्यक्ष श्रीमन मध्वाचार्य मूल संस्थानाधीश्वर श्रीमद् कवींद्रयति पुंगव समलंकृत दक्षिणादिपीठाधीश्वर निखिल भूमंडलाचार्य वर्य सकल यति कुलतिलक निखिल कर्मंदि वंद्य पदाब्ज सत्संप्रदाय प्रवर्तक सनातन धर्म संरक्षण दुरंधर श्री भागवताग्रेसर जगन्मान्य जगद्गुरु श्रीमद् विजयेन्द्र तीर्थ करकमल संजात श्रीमद् सुधींद्र तीर्थ वरकुमार राजाधिराज संसेव्य पादकंज श्रीमद् राजाधिराज श्रीमद् राघवेन्द्र तीर्थ गुरु सार्वभौम जय जय पराक् स्वामीन् पराक् बहु पराक्।

जय जय श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य पदवाक्य प्रमाण पारावारीण शेखर यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाध्यष्टांग योगानुष्ठान गरिष्ठ षड दर्शनाचार्य वर्य निखिल विद्या चक्रवर्तिन सर्वतंत्र स्वतंत्र चतुष्षष्टिकला पारंगत दुर्वादिमत्तेव पंचानन व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर श्रीमद्वैदिक सद्वैष्णव सिद्धांत प्रतिष्ठापनाचार्य नास्तिक कुलतिमिर सहस्र किरण आस्तिक दर्शन महाचार्य श्रीमद्हंसनामक परमात्म ज्ञानपीठाध्यक्ष श्रीमन मध्वाचार्य मूल संस्थानाधीश्वर श्रीमद् कवींद्रयति पुंगव समलंकृत दक्षिणादिपीठाधीश्वर निखिल भूमंडलाचार्य वर्य सकल यति कुलतिलक निखिल कर्मंदि वंद्य पदाब्ज सत्संप्रदाय प्रवर्तक सनातन धर्म संरक्षण दुरंधर श्री भागवताग्रेसर जगन्मान्य जगद्गुरु श्रीमद् विजयेन्द्र तीर्थ करकमल संजात श्रीमद् सुधींद्र तीर्थ वरकुमार राजाधिराज संसेव्य पादकंज श्रीमद् राजाधिराज श्रीमद् राघवेन्द्र तीर्थ गुरु सार्वभौम जय जय पराक् स्वामीन् पराक् बहु पराक्।